हवा वो हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे खुदाया।

ओहे सामने सब्ज गुंबद का मंजर, ओहे सामने सब्ज गुंबद का मंजर, उसी में तो आराम फरमा है अनवर। वो है सामने सब्ज़

नजर ढूंढती है, नजर ढूंढती है दियारे मदीना, है दिल और जान बेकरारे मदीना। वो देखो उहद पर शुजा